0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: It's
8: music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpasses.
1: It's commercial time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
0: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are staying. We are playing
11: Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
9: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: Hey, Adam.

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आएं और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
10: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं, तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 90s।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
13: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
6: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
6: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
6: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
6: टेस्ट भी वाइब भी।
14: You are listening 97.1 FM.

0: We are playing Fizzan 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Haza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
7: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
3: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
7: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
3: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
8: You are listening 97.1 FM.
9: You are listening. We are playing
10: Fazan 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: This is a public service announcement.
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27th मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज
8: फुट टैपिंग म्यूजिक।
9: हजार 97.1 FM।
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
11: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: What are you doing? Wow. Come on, man. Oh, are you serious? Come here.
1: This is a public service announcement.
2: Everybody. The station.
3: That plays.
4: Foot tapping music.
5: Hazar 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ
7: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
10: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
8: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
11: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
12: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
12: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
12: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
12: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
15: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
6: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
15: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
6: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
15: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
6: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
15: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
6: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
15: टेस्ट भी वाइब भी।
16: You are listening 97.1 FM.
17: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
18: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

वेरी गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल आदाब सामिनी जीवकार एंड लिसनर्स ऑफ फजा 97.1 एफएम एंड डैब हियर इज योर होस्ट नासिर खान प्रेजेंटिंग अ वेरी लाइवली एंड डेफिनेटली लाइव शो नेमली गुड मॉर्निंग जी गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंगम। तो आए समझाएं सुन लें बताएं कैसे आप सब लोग के अहवाल मांगंग दंग मांगा इन वर्तनम सुगम सुगमानु केम छबों जो की हाल चाल है मेरा थे तो वाड़ा मेरे नाम आपका होस्ट वेलकम बैक करते हूं तमाम समातों को जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। हाँ अरे ऐप से याद आया आपको बताते चले ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे आप। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे, वहां जाके टाइप करेंगे आप रेडियो फजा 97.1 एफएम ऑफिशियल और एक खूबसूरत सब पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर में फजा लिखा आपके सामने आएगा। डाउनलोड कीजिए गेट कीजिए और उसके बाद जब आप प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी स्मार्टों की नजर। गुड मॉर्निंग नॉटिंगम। और जनाब समझाएं आप तो ठीक हैं, मैं भी ठीक हूं, A1 है। और इस खूबसूरत से मौसम में कहाँ की तैयारी है। और सबसे पहले गुजारिश है कि अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं सुबह के इस पहर ठीक 10 बजे तक मेरा और आपका साथ रहते हैं। इससे पहले कुछ ट्रैक्स आपकी स्मार्टों की नजर थे लेकिन उम्मीद है कि कल से ये ट्रैक्स भी नहीं रहेंगे। ऑन द स्पॉट 8 to 10 ही हम आपका होस्ट नासिर खान रहेगा आपके साथ। मुख्तलिफ सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद होते हैं, मोटिवेशन को लेकर हम चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास कुछ ज़्यादा बातें होती हैं, कुछ थोड़े से अरकाम होते हैं, कुछ थोड़ी सी लम्हात होते हैं, कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिनके वजूहात पे कहते हैं ना जिसे तूने समझा मेरी बेवफाई मेरी ज़िंदगी की वो मजबूरियाँ थी जी। तो जनाब तंजुम साथ साथ चलता रहेगा गुड मॉर्निंग नॉटिंगम का ये खूबसूरत सा सफर आप लोग मेरे साथ। और आपको ये बताते चलें कि 97.1 एफएम बेसिकली लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंगम एंड प्रोवाइडिंग ए फ्रेश ब्रीज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो जनाब अगर आपको भी ये इंटरटेनमेंट लाइफ चाहिए तो आपसे गुजारिश है कि आ जाए ना आप मेरे स्टूडियो के लाइव व्हाट्सएप नंबर पे। द नंबर इज 01157100971। लेट मी रिपीट इट अगेन 01157100971। लाइव लिसनिंग के लिए आप क्या करेंगे, लाइव लिसनिंग के लिए आप जाएंगे एड्रेस बार में, वहां जाके टाइप करेंगे रेडियो फजा 97.1 एफएम ऑफिशियल, नहीं आप टाइप करेंगे radiofaza.co.uk। उसके बाद लाइव स्ट्रीम रहेगी आपके सामने। हमारी बाकी जितनी भी ट्रांसमिशंस हैं पॉडकास्ट हैं इनके बारे में जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विच इज radiofaza.co.uk। अलावा हजी हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है रेडियो फजा के, जनाब फेसबुक लिंक्डइन इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब एक्स एटसेट्रा वाई। तो जनाब सब को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए उनको और एहसास दिलाइए अपने होने का। तो जनाब ये थी हमारी गपशप, ये था हमारा इंट्रो जो हो चुका है, बज़ाहिर तो नहीं होना चाहिए था। कहते हैं कि जब कोई अच्छी बात आपके पल्ले पड़े तो फिर उस अच्छी बात को आगे लोगों तक पहुंचाएं। आज का दिन मोटिवेशन कैसी रहे और जो स्पेशली आज का मौसम है, अरे एक बड़े प्यारे से हमारे व्यक्ति हैं उन्होंने कहा कि आज का मौसम कैसा है। कहते हैं दिल के मौसम अच्छे हों तो सारे ही मौसम अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि नॉटिंगम शायर का टेम्परेचर इस वक्त नाम मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हल्की फुल्की सी बारिश, ठंडी ठंडी सी हवा आपके साथ है। फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल है जिस वक्त 36% और बारिश के इम्कान तो हर वक्त है ही हैं। जिन एरियाज में बारिश हो रही है वेस्ट मिडलैंड में या कहीं भी आपके गिरदो नवा में, तो लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बताइए और बताने के साथ साथ आप ये बताइए कि आप अपना खूबसूरत सा पैगाम किसको इस बारिश के मौसम में देना चाहते हैं। यूजुअली हमारे नॉटिंगम में ना यूके में इंग्लैंड में हम जो स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी हम थोड़े से बोर भी हो जाते हैं क्योंकि साल हर साल एक जैसा ही मौसम रहता है, लेकिन आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि इस बार तो गर्मी ने ना अपनी थोड़ी सी झलक दिखाई है। लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो उड़ती हुई चिड़ी है, वो ये कह रही है कि गर्मी और भी बढ़ेगी। कहते हैं ना कि अगर गर्मी बढ़ जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो जो तो जनाब पंजाब से बिलोंग करते हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान के पंजाब से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो दे ऑल वेरी वेल नो सत्तू। बिल्कुल जनाब सत्तू का शरबत पता नहीं यहाँ से मिलेगा। हाँ पाक फूड देते हैं डेफिनेटली, हरियाणा सुपर मार्केट से भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं मराया इंटरनेशनल रेस्टोरेंट है, इट्स अ वेरी बिग एंड फेमस रेस्टोरेंट ऑफ अरेबिक कुजीन। वहाँ पर आपको ना ठंडे मशरूबात डेफिनेटली मिलेंगे जो अरेबिक स्टाइल के होते हैं, असीर जिनको कहते हैं, जूस जिनको कहते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे अजवा देसी कुजीन है, उसके अलावा और भी हमारे जितने भी जो साउथ एशियन कम्युनिटीज़ के जो रेस्टोरेंट हैं और जो हमारे नॉटिंगम शहर की पहचान है, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी, उसमें ठंडे जूसेस भी रहेंगे। लेकिन आपसे एक चीज़ की गुजारिश मैं करता चलूँ कि सुबह हो खाली पेट अगर आप एक लेमन
हाफ लेमन जिसको कहते हैं वो स्क्वीज करके एक नॉर्मल पानी में डालकर उसको अगर छींक लगा के पी लें ना, और कहते हैं ना बर्फ यानी डकार भी नहीं लेना भाजी तो फिर आपको सारा दिन गर्मी का एहसास भी नहीं रहेगा और आपको इस चीज़ का भी पता लगता रहेगा कि आपके अंदर जो गर्मी थी वो ठंड में बदल चुकी है। खैर ट्रैक तो मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा और आपका साथ हार्डली कोई 10 से 15 मिनट का रह चुका है, थोड़ा सा लेट मैंने ट्यून किया, लेकिन ट्यून करने के साथ साथ मैंने आपको ये बताना ज़रूरी था कि मैं आ चुका हूँ। कल से जनाब हम करेंगे और मेरे साथ बहुत ही प्यारे से बड़े नन्हे मुन्ने से शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, डेफिनेटली ट्रेनिंग में भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, और मूसा बहुत क्लास के व्लॉगर हैं और ये भी जनाब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कल, हो सकता है ये प्रोग्राम में मेरे साथ पार्टिसिपेट करें और डेफिनेटली आपकी गुड मॉर्निंग को मजीद गुड कैसे बनाएंगे जब आप लोगों की समाधों की नजर रहेगी हमारी आवाज़ और आप ट्यून करेंगे 97.1 FM।

जी बिल्कुल जनाब, नेवर एवर से गुड बाय, गुड बाय कहने भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं हूँ आपके साथ, आपका मेजबान नासिर खान। और एक और खूबसूरत सी बात कहते हैं ना कि जब अच्छी बात आपके सामने हो, आपके पल्ले पड़ी हो, तो फिर उस बात को लेके आगे भी चलना चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन को अगर हम लेके चलें बेसिकली, तो काफ़ी सेगमेंट होते हैं मेरे प्रोग्राम के, जैसा कि पर्सनैलिटी ऑफ द डे, उसके बाद कोई ना कोई हमारे पास हैक होता है आज के दिन के हवाले से। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि लास्ट वीकेंड आपका कैसा गुजरा। मैं कुछ आपके साथ ऑफ रहा, डेफिनेटली मैं दोबारा ऑन हूँ। और आप जानते हैं कि गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का ये खूबसूरत सा सफ़र, ये खूबसूरत सी सवारी, आप लोगों की सवारियाँ, यानी आप लोग मेरे मुसाफिर हैं। चढ़ते जाएं जनाब, नॉटिंघम की जो गाड़ी है वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा है। हार्डली मेरे पास कोई सात से आठ मिनट रह चुके हैं और उसके बाद कुछ ट्रैक्स भी प्ले किए जाएंगे, ट्रैक्स की फरमाइश भी है। लेकिन इस वक्त मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने आपको सुनानी है काफ़ी

बिल्कुल जनाब, ये जो कोट है बेसिकली ये कोट है द ग्रेट ऑथर मार्टिन लोथर की। मार्टिन कहते हैं जनाब कि अब हम अगर नॉर्मल अपनी ज़िंदगी की प्रैक्टिस करें ना सामीन, तो हमारी यूजुअली लाइफ में ये चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं कि इंसान के पास जब कोई मुश्किल वक्त आता है, बज़ाहिर जिसको हम मुश्किल वक्त समझते हैं, इंसानियत के तौर पर डेफिनेटली हर इंसान की ज़िंदगी में पेचों हम आते हैं, ऊंच और नीच भी आती है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंसान के पास जितनी कुव्वत गोयाई आती है, कहते हैं ना कि मेरी समातों ने इतना शोर सुना है, मेरी समातों ने इतना शोर सुना है कि अब जो चाहूं तो आवाज पे ताले पड़ जाएं, घर में सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पैर दुबाने लग जाए। तो जनाब जवानी में हर इंसान के पास एक ना एक रूच होता है और उसके बाद हर रूच को एक जवाल होता है। जैसा कि अगर हम थोड़ा सा मुस्लिमिज्म की तरफ जाएं तो इन्नमा अल-उस्र युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। बाबा गुरु नानक को देखें तो सारी ज़िंदगी उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा की है, एक ऐसी इबादत की है जिस इबादत के लिए उन्होंने ज़िंदगी में इंसानियत को हमेशा फोकसिंग में लेके आए हैं, उन्होंने इंसानियत की तबलीग की है। हमारे जितना भी आप हिंदुइज़्म देख लें उसमें भी यही चीज़ है, इंसानियत को हमेशा बतदरीज आपके सामने अदब व एहतराम के साथ रखा गया है। यही हमारी सिविलाइजेशन है और इस सिविलाइजेशन पे जब हम मोस्टली सोचते हैं, समझते हैं और परखते हैं, एक दूसरे को अंदाज में बताने की कोशिश करते हैं या किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास कभी कभी अल्फाज नहीं होते। तो सामने अल्फाज का सहारा लेना छोड़ दीजिए, जब आप कम्युनिकेट करेंगे उन लोगों से जो लोग आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिनको आप ये समझते हैं कि मुश्किल वक्त में उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, अरे ऊपर वाले ने, ये भी तो हो सकता है कि जब आप मुश्किल वक्त में हो तो वो भी मुश्किल वक्त में हो। इसलिए अपनी कुदरतों को ख़त्म कीजिए, यही आज का मैसेज है, यही आज की मोटिवेशन है। और आज की मोटिवेशन के हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर दिल में कोई कुदरत है, अगर किसी के पास आप कोई थोड़ी सी चपखलिश रखते हैं अपने दिमाग में, अपने दिल में या अपनी रूह में, या कहीं आपको कोई अंदरूनी ज़ख्म है, तो उस ज़ख्म को थोड़ी देर भर लीजिए और भरने के साथ ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए कि उसने एक नया दिन आपको दिया, फिर अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं और फिर आप अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवान दवा हो सकते हैं। और मंजिल मकसूद की तरफ रवान दवा होने के बाद आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आपके पास जितनी ब्लेसिंग्स हैं, जितनी नियामतें हैं, वो नियामतें कम नहीं हैं, वो नियामतें हमेशा आपके पास मखसूस रहती हैं, वो सिर्फ आपके लिए ही हैं। इसलिए उठिए, अगर आप बिस्तर में हैं शिफ्ट करके वापस आएं, दोबारा जाने की कोशिश करें। इस देश के परदेश में, इस परदेश के देश में हम तीन तीन शिफ्टें करते हैं ताकि HMRC के टैक्सेस पे कर सकें, होम ऑफिस की कंप्लाइंस पूरी कर सकें। यही हमारी सिविलाइज्ड होने की सबसे बड़ी निशानी है। तो जनाब जुड़े रहिए रेडियो 97.1 FM के साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Radio station for people who love music. 97.1 FM.

Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal. And a very happy morning to all my listeners who are listening me right now. मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द टीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM. See the listeners, Radio Faza jahan milti hai aapko information, communication and entertainment. So, is information, communication and entertainment ke pattern ko lekar chalenge hum aur aap ek saath. Ab se lekar theek 2 ghante tak yani ab se lekar theek 2 ghante tak hum aur aap rahenge saath saath milkar banayenge aapke aaj ke is din ko, is subah ko aur bhi zyada khoobsurat aur bhi zyada yaadgar. तो लिसनर्स इंतजार किस बात का है आप अभी उठाइए फोन 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर सो जल्दी से जाइए और इस नंबर को सेव कर लीजिए इस नंबर पे जाइए हमें अपने नाम के साथ साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ आप चाहते हैं हमसे शेयर करना और आप चाहते हैं कि हम वो सब अपने तमाम तर लिसनर्स से शेयर करें सो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं

इसके साथ साथ आप हमें radiofaza.com.uk जो कि है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, इसके थ्रू ट्यून कर सकते हैं और हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं। और हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को इजीली अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा तरीका बहुत सिंपल सा है, आपने जाना है एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाकर सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। यही है हमारी एप्लीकेशन, सो जल्दी से जाइए और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। अब जो लिसनर्स ड्राइव कर रहे हैं या फिर हैं किसी भी सफर में और आप चाहते हैं कि आपका सफर बन जाए हमारे साथ खूबसूरत, सो इसके लिए आप हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। ये तो थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहिए। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अब तक आपने अपने दिन का आगाज कर लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो आइए मिलकर करते हैं इस नए खूबसूरत से दिन का एनर्जेटिक स्टार्ट। तो लिसनर्स, जिस तरह से एक अच्छे एक खूबसूरत दिन का आगाज होता है एक अच्छे हेल्दी मील के साथ, तो ठीक इसी तरह से हमारे शो का आगाज भी होता है एक खूबसूरत से साउंड ट्रैक के साथ। तो जी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, मजीद गपशप करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद म्यूजिकल ट्रैक को शामिल करने का। तो आइए सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक और म्यूजिकल ट्रैक से वापसी पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे, क्योंकि अब तक आप और हम रहेंगे दो घंटे साथ साथ, सो बातचीत तो चलती रहेगी। अभी सुनते हैं ये साउंड ट्रैक।

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस साउंड ट्रैक को एंजॉय किया होगा। तो जिस तरह से तिनका स्टार्टअप करने के लिए और शो का स्टार्टअप करने के लिए हमने चूज किया एक फ्रेश, एक एनर्जेटिक सॉन्ग, ठीक उसी तरह से जैसा कि आज है ट्यूसडे 9th June, जून का है दूसरा हफ्ता चल रहा, और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी भी अपने पीक पर जाती जा रही है।

चलिए तो लिसनर्स, मैं बात ये कर रही थी कि किस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी अपने पीक पर जाती जा रही है, लेकिन टेंशन की क्या बात, जब दिन का आगाज इस खूबसूरत से शो से और खूबसूरत से सॉन्ग से हो तो इंसान का दिल और मूड खुद बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आप इस वक्त घर से बाहर जा रहे हैं या फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं या इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो अभी उठाइए हेडफोन्स और लगा लीजिए ताकि अगले 2 घंटे आपकी ज़िंदगी के बन जाएं सबसे खूबसूरत सबसे हसीन लम्हात। और वो तमाम तर डिवास जिनके लिए हमने ये शो डिज़ाइन किया है, आप सभी भी अगर अब तक आपने क्लीनिंग कंप्लीट कर ली है और आप सोच रही हैं कि आज के दिन क्या किया जाए, सो इट्स द टाइम, इट्स द मोमेंट, आप अभी से हेडफोन्स लगाएं और हमें सुने। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके आज के इस दिन को, इस सुबह को खूबसूरत बनाएं, मोटिवेटिंग बनाएं और साथ ही साथ फ्रेश बनाएं। जी तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे हर शो का स्टार्टअप होता है एक खूबसूरत से, एक मोटिवेशनल कोट से, ताकि आपका बाकी का जो पूरा दिन है वो अच्छा गुजरे, ना सिर्फ अच्छा गुजरे बल्कि पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हो। तो आज भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इसी तरह का एक खूबसूरत सा मोटिवेटिंग सा कोट। वेल, सुनते हैं, देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है।

डियर लिसनर्स, हमारा आज का कोट है, स्टार्स डोंट कंपीट विद द सन, दे जस्ट वेट फॉर द राइट कैनवास टू शो दैट द डार्कनेस वॉज नेवर देयर एनिमी बट देयर स्टेज। आई नो लिसनर्स, आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझने में मुश्किल लग रहा है, बट अगर इस एक लाइन को अगर आप दिल से समझें तो ये आपकी सोच बदल सकती है। इसका इंसान और प्यार से बहुत ही गहरा ताल्लुक और गहरा मतलब है। चलिए अपने तमाम दर लिसनर्स के लिए इस बात को थोड़ा सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आज का कोट ये कह रहा है कि सितारे कभी सूरज से मुकाबला नहीं करते, वो बस सही वक्त और सही आसमान का इंतजार करते हैं ये देखने के लिए कि अंधेरा कभी उनका दुश्मन नहीं था बल्कि उनका स्टेज था, उनका जहां जहां वो चमकते थे। आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट बट ऑनेस्टली यू सी व्हेन माय लवली डिवास और मेरे प्यारे सभी लिसनर्स, हम आजकल किसी की फास्ट दुनिया हर वक्त एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे रहते हैं। हमारा मेन पर्पस, मेन मोटिव ये होता है कि हम दूसरों से आगे बढ़ें, ना सिर्फ दूसरों से आगे बढ़ें, हम ऐसा भी सोचते हैं कि अच्छा ये एक इंसान काम कर रहा है तो ये हमसे अच्छा क्यों कर रहा है, या फिर हमारे माइंड में एक कॉन्स्टेंटली जंग चलती रहती है कि किस तरह से हम दूसरों से आगे बढ़ें, खुद को प्रूव करें। आई नो इट्स अ गुड थिंग कि आप खुद को प्रूव करें, कुछ चैलेंजिंग करें, कुछ डिफिकल्ट करें, कुछ नया करें, लेकिन अगर आप अपना एक माइंडसेट ऐसा रख लें कि मुझे दूसरों से कंपटीशन करना है या फिर इसको पीछे करके खुद को आगे करना है, सो इट्स अ रियली रॉन्ग थिंकिंग, ये बहुत गलत सोच है और यही एक ऐसी सोच है जो इंसान के माइंड को थोड़ा सा नेगेटिव करती है और फिर नेगेटिव एनर्जी को इनक्रीज करती है। तो हमारा आज का कोट ये कहता है कि इंसान को कभी भी दूसरों से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान की, हर एक चीज़ की, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, हर एक इंसान की अपनी खसूसियत होती हैं, अपने बेनिफिट्स होते हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक चीज़ एक जैसी हो जाए। ऑब्वियसली हर एक इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम खुद को दूसरों से कंपेयर करें और बस ऐसे देखें कि अच्छा फलां बंदा ये काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, काश मैं उसकी तरह करूं, तो इस तरह से फिर इंसान डीमोटिवेट हो जाता है और जो काम वो खुद कर रहा होता है उसको उस पर काफ़ी गलतियाँ दिखती हैं, अच्छा नहीं लगता। सो कोशिश यही करें कि कॉम्पिटिशन ना करें, हाँ खुद पर वर्क करें और खुद को आगे बढ़ाएं।

जी तो लिसनर्स, हमारे आज के कोर्ट में जैसा कि हमने बात की सितारों की और सूरज की, सो बेसिकली ये एक सितारा आप हो और आपका सूरज से कोई भी कंपटीशन नहीं है। सो माय ऑल द लिसनर्स एंड लवली डिवास, अपने जिंदगी पर फोकस करें, खुद पर काम करें, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, थोड़ा पॉजिटिव रहें और कंपटीशन कभी भी मत करें। सो वेल, ये था हमारा आज का कोर्ट। उम्मीद करती हूँ लिसनर्स आप सभी को ये कोर्ट अच्छा लगेगा एंड देन ये आपकी जिंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज जरूर लेकर आएगा।

वेल लिसनर्स, काफी सी इस तरह की गुफ्तगू तो हमने कर ली और मोटिवेशन की भी बात कर ली. अब जरा करते हैं थोड़ी इधर उधर की चिट चैट. तो जी लिसनर्स, जैसा कि अब मौसम बदलता जा रहा है क्योंकि जून का स्टार्ट हो चुका है और देखते ही देखते आज जून का सेकेंड वीक भी हमारा स्टार्ट में है. तो गर्मी के हवाले से आप सभी के माइंड में वो क्या एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले आती है, और आपको किस तरह का वेदर अच्छा लगता है, फैसिनेट करता है, अभी बताइए मुझे. 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर. सो जल्दी से जाइए और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करें.

लिसनर्स, हमारे एक प्यारे से लिसनर्स की भरपूर फरमाइश पर ये खूबसूरत सा साउंड ट्रैक शो में शामिल करते हैं, क्योंकि हमारे उन लिसनर्स का कहना ये था कि ये गाना आपने लाजमी कल शो में शामिल करना है। तो जो ये काफी सीरियस गपशप के बाद आई थिंक साथ साथ मूड को थोड़ा थोड़ा फ्रेश करते रहना चाहिए और म्यूजिक मस्ती भी साथ साथ होनी चाहिए, नहीं तो इंसान बोर हो जाता है। और तकरीबन आप भी सोच रहे होंगे कि ज़ैनब काफी सीरियस बातें कर रही है। सो सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक एंड देन यहीं से कंटिन्यू करेंगे।

0: वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से साउंड ट्रैक को एंजॉय किया होगा। अगर आप सभी की भी ऐसी कोई फरमाइश है, कोई रिक्वेस्ट है, आप चाहते हो कि मैं अपने शो में शामिल करूँ, सो मुझे ज़रूर बताइए 01157100971। ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर। सो यही है मेरा और आपका रब्ते का नंबर। आप इसी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह के साउंड ट्रैक्स पसंद हैं और आप क्या क्या सुनना चाहते हैं शो में। वैसे भी लिसनर्स, कहा जाता है कि मौसीकी रूह की गिजा होती है और आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग म्यूजिक लाइक अ थेरेपी। अब पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब कभी मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ या फिर समहाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, अक्सर होता है ना कि हम डेली बेसिस पे काम काज कर रहे होते हैं, अपने घर में भी काम कर रहे होते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस हमारे ऊपर आ ही जाता है। समटाइम्स होता है ना कि कोई काम कर रहे होते हो, करने नहीं हो रहा होता, फोकस नहीं हो रहा होता, तो उस मोमेंट में मैं क्या करती हूँ, अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक फन फैक्ट बताऊं कि जब कभी ना मेरे एग्जाम्स चल रहे होते हैं और मुझे बिल्कुल भी पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता, तो मैं अपने एग्जाम्स पे भी म्यूज़िक सुन लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट म्यूज़िक सुनने के बाद माइंड थोड़ा इंसान का रिलैक्स करता है, फ्रेश फील करता है और एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है। सो इसी तरह जहाँ म्यूज़िक को लोग थेरेपी के तौर पर देखते हैं, वहीं म्यूज़िक में फिर डिफरेंट तरह के फिर टर्म्स आ जाती हैं, फॉर्म्स आ जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको पॉजिटिव म्यूज़िक पसंद होता है, किसी को लाउड, किसी को सॉफ्ट, ये सब इंसानों की अपनी अपनी चॉइस और प्रेफरेंस होती है, बट आई थिंक म्यूज़िक इज़ द बेस्ट थिंग दैट हील्स योर सोल। जी तो लिसनर्स, इसी के साथ साथ अभी शो में वक्त हुआ चल रहा है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। आई नो बातें करते करते इतना मजा आ रहा है कि दिल तो नहीं कर रहा कमर्शियल की जानिब जाने का, लेकिन चूंकि कमर्शियल ब्रेक भी शो का हिस्सा है, सो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। सो चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आपसे मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM को सुनते रहिए।
1: It's commercial time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210792।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
4: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus, and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Espeshul Mandi, slow-cooked, aromatic, and rich with traditional spices.
4: From breakfast and brunch to lunch, dinner, and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
4: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आई एम योर होस्ट ज़ैनब फातिमा एंड यू आर लिस्टिंग रेडियो फजा 97.1 FM। जी तो लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द डीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM, जहां मिलती है आपको अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन, अ लिटिल बिट कम्युनिकेशन और बहुत सारी इंटरटेनमेंट। जी तो लिसनर्स, वो सभी लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है या फिर पहले किसी मसरूफियत की वजह से या फिर किसी काम की वजह से ज्वाइन नहीं कर सके और अभी अभी हमारे शो का हिस्सा बने हैं, उन सभी लिसनर्स के लिए एक बार फिर से बताते चलती हूँ, radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। सो आप इस वेबसाइट के जरिए हमें ट्यून कर सकते हैं, हमें सुन सकते हैं और हमारी सुरीली आवाज़ को हो तक पहुँचा सकते हैं। इसके साथ साथ 0115710097 हमारे स्टूडियो का नंबर है, सो आप इस नंबर के जरिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं हमें लेकर, हमारे रेडियो को लेकर, या फिर आप चाहते हैं कि आप कोई गुफ्तगू करें, या फिर आपको चाहिए कोई ऐसा जो आपको सुने, दिल से समझे, तो उसके लिए आप हमें 0115710097 इस पर मैसेज कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्यूरीज को दूर करे और आपको आपके होने का एहसास दिलाते रहिए। और रेडियो फजा 97.1 FM है हमारी एप्लीकेशन, सो आप चाहिए जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपडेट रहिए और आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहिए।

जी तो माय लवली डिवास, जैसा कि हमारा फर्स्ट सेगमेंट खत्म हो चुका है और आई थिंक फर्स्ट सेगमेंट के साथ साथ अब तक आप सबने भी अपनी क्लीनिंग कंप्लीट कर ली होगी और अभी वक्त हुआ है हमारे शो के सेकंड सेगमेंट का, यानी कि उस सेगमेंट का जिसका रहता है मुझे आपको हम सबको इंतजार, स्पेशली उन तमाम तर वर्किंग वुमेंस को जो डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा काम काज करती हैं। यू नो लाइफ इज़ वेरी हैक्टिक, बहुत सारा काम करना पड़ता है, डेली बेसिस पर टाइम बिल्कुल भी नहीं होता और इस कम वक्त में हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा पकाएं जो कि हो मज़ेदार, डिलिशियस और यमी, ताकि हमारे घर वालों को वो अच्छा लगे और हमारा ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो। सो आप सभी की तमाम तर समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आज भी मैं लाई हूँ अपनी तमाम तर डिवास के लिए ऐसी ही मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज, जो कि बहुत ही बनाने में सिंपल हैं, इजी हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। बट ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली जब आप इन रेसिपीज को ट्राई करेंगे सो आपको बहुत अच्छी लगेंगी।

0: में लिपटी।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशन भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: 던지실 거.
1: It's commercial time.
2: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
7: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
8: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर।
7: फजा 97.1 FM, हर पल आपके साथ साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM।

0: ओके जी, वेलकम बैक, खुश आमदीद जी एक दफा फिर से तमाम सुनने वालों को। कहेंगे जी वेलकम, आप सुन रहे हैं रेडियो फिजा एफ एम 97 डैब। बिल्कुल जी, क्यों जी, क्योंकि दौर जो है वो डिजिटल हो चुका है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को भी डिजिटल होना चाहिए, इसलिए हम लोग जो है डैब सिस्टम को भी लेके आ गए हैं। जिस तरह जिससे इससे फ़ायदा ये है कि जो लोग, जो दोस्त भाई हमें अपनी गाड़ियों में सुनते हैं, जो लोग हमें सफ़र करते हुए सुनते हैं, ट्रैवल करते हुए सुन रहे हैं, स्पेशली जो दोस्त हमें जो यहाँ पे परदेसी हैं और दूसरे मुल्कों से आके यहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो गाड़ियों में चूँकि हमें ही सुना जाता है ज़्यादातर, तो उन लोगों की तक हमारी आवाज़ को साफ पहुंचाने के लिए जो है वो आप लोगों के लिए हम डैब सिस्टम भी लाए हैं, जिसके ज़रिए आपको हमारी आवाज़ जो है बिल्कुल ज़बरदस्त और टिप टॉप होके पहुंचती है। तो यकीनन आप लोगों को हमारी आवाज़ जो है वो बहुत ही अच्छी आ रही होगी और आप लोगों को काफ़ी जो है मज़ा आ रहा होगा। वेल जी, आप लोग हमारा साथ निभा सकते हैं किस तरह, बिल्कुल 0115571009711 इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लोग हमारा साथ निभाएंगे, अपने होने का एहसास हमें दिलाएंगे। नॉटिंघम सिटी से आप हमें लाइव सुन रहे हैं, दोपहर का टाइम है और ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक तमाम सुनने वालों के नाम, जो लोग हमें सुन रहे हैं।
1: ना सुना उसने तवज्जो से फसाना,
0: क्योंकि खाने का टाइम है, तो जो सिस्टर्स हमें अपने घरों में बैठ के सुन रही हैं खाना बनाते हुए, तो उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि जब आपके घर वाले आपके पास आए तो उनको प्यारा प्यारा खाना बना के दें, ताकि वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कमा के ला सकें।

0: धुन के अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप सुन रहे हैं और साथ में हमारी प्यारी सी आवाज भी आपकी समातों से टकरा रही है। माहौल तो पूरा बन गया है मेरे ख्याल में।
1: दिल के टुकड़े जो किए थे नामन।
0: मौसम की बात करें तो मौसम इन दिनों काफी जो है वो अच्छा है, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरत से ज्यादा घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आपको कोई मसला हो गया, बीमार हो गए, तो फिर ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बीमारी जब आती है तो फिर पता नहीं चलता,

वेल जी, बहुत ही अरसे के बाद मेरी और आपसे मुलाकात हुई है, तो यकीनन आप लोग हमारी आवाज़ को आप लोगों ने काफ़ी मिस किया होगा। और आज मेरे शो का एंथम भी कुछ इस तरह का है कि मुझे जो है वो आप लोगों को एंटरटेन करना है, आप लोगों के चेहरे पे स्माइल बना के रखनी है, आपके चेहरे पे स्माइल लानी है, आप लोगों को हंसा के रखना है। और जो है वो ये मेरे जैसे सीरियस बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल टास्क है।

वेल जी, बहुत ही जो है वो मुश्किल है वाकई, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा जो है बड़ा सीरियस ही रहता हूँ तो सीरियस बनने के लिए इस तरह का शो करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के चेहरे पे स्माइल ला के ही हम आप यहाँ से स्टूडियो से जाएंगे, इससे पहले हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। वेल जी, आप भी हमें बता सकते हैं आप कौन सा ट्रैक सुनना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं, चाहे गाना इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे कोई भी हो, हम ज़रूर अपने शो का हिस्सा बनाएंगे और आपके कानों तक उसको ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर आपकी प्यारी प्यारी समातें हमें सुन रही हैं तो हमारा भी काम बनता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए और आप लोगों को जो है वो इंटरटेन किया जाए। बाहर के मौसम का मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि स्टूडियो में माहौल बिल्कुल चिल है और यहाँ पे बिल्कुल भी हमें खबर नहीं है कि बाहर क्या मौसम है, तो मैं कोई भी पेशेंट कोई ऐसी नहीं करना चाहता कि जी बाहर बहुत मौसम ठंडा है और आप लोग बाद में कहेंगे नहीं उसामा फानी तुमने तो गलत बता दिया है, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बाहर मौसम ठंडा है या गर्म है, क्योंकि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तो फिर ही मैं जो है वो कोई पेशेंटगोई कर सकूँगा माहौल को देख के उसके मुताबिक। उससे पहले कुछ भी बताना काफी मुश्किल है। प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, और ये ट्रैक जनाब बिल्कुल लेटेस्ट आया है, और इस ट्रैक में आवाज़ है जी जानी की, और ये ट्रैक यकीनन आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे तो ये ट्रैक काफ़ी अच्छा लगता है, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि ये ट्रैक जो है अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन मैं इसको ना अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना नहीं पा रहा था किसी वजह से, तो आज फाइनली हमें मौका मिल गया है। ट्रैक का नाम है जी अल्लाह दे बंदे यार।

तू मेरे कॉल कॉलर है अल्लाह दे मंदिया। ये बिल्कुल उन तमाम लोगों के नाम ट्रैक है जो लोग किसी से प्यार करते हैं लेकिन जिससे वो प्यार करते हैं वो उससे दूर हैं, तो उन लोगों से दूर रहना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक शख्स जिसको आप देख के जीते हों, जिसमें आपकी खुशियाँ हों, जिससे आप मिलें तो आपके चेहरे पे खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं, अगर वो शख्स आपसे दूर चला जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों के लिए ही शायर ने ये शायद गाना लिखा है, तू मेरे कॉल कॉलर है अल्लाह दे बंदिया।

0: ओके जी, तो आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है मुझे जरूर बताएं। वैसे मैं डेफिनेटली अपने हिसाब से अगर बात करूं तो मुझे इटली जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इटली में जो है वो सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि वहाँ की जो
1: Ready to move.
2: It's all about the beats.
3: Wow,
4: FM. Only Tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए।

बहुत ही प्यारे से ट्रैक के साथ एक दफ़ा फिर से जी वेलकम कहते हैं तमाम सुनने वालों को। यकीनन वो ट्रैक आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। वेल जी आप लोग कहेंगे कि भाई वो देमियाँ मिट्टू बांध रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है, वो ट्रैक है ही अच्छा। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक जनाब 12:52 हो चुके हैं और ठीक 6 मिनट के बाद जनाब एक और कमर्शियल ब्रेक की जानब 4 मिनट के बाद हम एक और कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे। तो इन 4 मिनटों में जनाब आप लोगों के पैगामात को भी हम लोग अपने शो में शामिल कर लेते हैं ताकि पता चल सके कि कौन कौन लोग हैं जो हमारे साथ निभा रहे हैं। सन्ना रानी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी इंग्लैंड से।

उसके बाद जनाब महविश हैं हमारे साथ, कहती हैं पुलिस वाला अपने बेटे से, तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बंद। बेटा कहता है ये पकड़ो 50 रुपए और इस बात को यहीं खत्म कर दो। ये तो कहानी काफी सुनी हुई लगती है। वेल जी बहुत शुक्रिया महविश, थैंक यू सो मच आपका जी। उस्मान हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी।

0: हफ्सा हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत ही प्यारा सा इन्होंने जोक भेजा। कहती हैं बीवी खामन से कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। खामन कहता है ओहो मैं तो शॉपिंग पर जाने का सोच रहा था। बीवी कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। खामन कहता है मैं भी मजाक कर रहा था। जी इस तरह के फनी जोक्स मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आप लोगों के पास हैं तो आप लोग हमें ज़रूर हमारे शो में भेजें ताकि जो है आप लोगों के चेहरे पर स्माइल ला सकें। जो लोग परेशान हैं कि जिनको तनहाई अभी तक नहीं मिली तो उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाएगी यकीनन, क्योंकि भाई जॉब्स में यही मसला होता है कि कभी तनहाई लेट हैं, कभी ये हो गया है, कभी वो हो गया है। तो इस चीज़ की टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना आपने। ठीक 2 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा। होप सो के साथ को भरपूर अच्छे तरीके से आप लोग और भी बहुत ही प्यारा बनाएंगे। 0115710097 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद वापस आएंगे।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
10: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
11: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
10: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
11: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
10: delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas aur fresh drinks, sab kuch ek hi jagah.
11: Kyunki jab khana ho zabardast to mood khud hi ban jata hai.
10: So, aaj hi visit karein Mood Restaurant, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS.
11: Har din ko banaye special Mood Restaurant.
10: Taste bhi, vibe bhi.
0: ओके जी, वेलकम बैक, खुश आमदीद एक दफा फिर से जनाब. ठीक एक बजे हम आपसे मुखातिब हैं एकदम लाइव ब्रॉडकास्ट. आप सुन रहे हैं रेडियो फिजा 95.1 FM. कल जी आप लोग हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं 01157100971. नंबर काफी औखा ही है, बहरहाल काम चला लीजिएगा प्लीज. वैसे जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं कि आप जो है ना शो में नंबर को जो है तीन सेकंड बोला था उन्होंने, या पता नहीं एक सेकंड बोला था. हाँ, 3 सेकंड आई थिंक बोला था उन्होंने. 3 सेकंड में आप नंबर पूरा रिपीट कर देते हो. लेकिन आज जो है वो नंबर क्योंकि न्यू है तो इस पे इसलिए नंबर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको बोलना. लेकिन यकीनन आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैंने नंबर जो है अनाउंस किया. एक दफा फिर से अनाउंस कर देते हैं 01157100971. इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. 971 का मतलब आप समझ गए होंगे क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी 97.1 है, तो इसलिए आखिर में 971 भी हमने लगा ही लिया है ताकि आप लोगों को नंबर याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाए और बाद में आप लोग ये ना कहें कि दिन जी हमने मैसेज लेने किया क्योंकि आपका नंबर काफ़ी मुश्किल था. तो नंबर के आखिरी 3 डिजिट समझ लें कि हमने आप लोगों के लिए हटा दिए हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी आसान कर दिए हैं, काफ़ी आसान हो गया आप लोगों के लिए नंबर. बस आपने शुरू के जो है वो 8 हिंट से याद रखने हैं. वैल जी, जो लोग हमें यूके के बाहर से सुन रहे हैं वो लोग अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने अपने साथ जो है वो हमारा कंट्री कोड लाजमी लगाना है 04-01-571-00971. नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन है यार आपकी कॉल डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में आएगी.

ओके जी, बिंदास हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद राजेश ठोकर हैं हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी अरजीत कौर है हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद चाहत है हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत ही प्यारा सा नाम है, थैंक यू सो मच आपका चाहत भाई। हरप्रीत सिंह साहब हैं, कहते हैं जी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल एंड हर टचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद जी मलक इफ्तार हैं, कहते हैं जी सिद्धू इज ओवर लव, ओके यस जी एब्सोल्युटली। बशारत भाई हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, दिल भेजा है आपने, थैंक यू सो मच आपका बशारत भाई साहब जितने भी दोस्त अजीज हमें सुन रहे हैं, हमें जो है हमारे साथ निभा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी, तहे दिल से मशकूर ममनून हैं आपके। आप पास होते हैं तो जनाब बिल्कुल आपका जो है वो किस तरह शुक्रिया अदा किया जाए, आपके गले में हार भी हम लोगों ने पहना देना था यकीनन। मंशा राजपूत हैं हमारे साथ, शो की बहुत तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। बुरहान हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शो में शामिल होने के लिए और तारीफ करने के लिए जी। सारे शो की तारीफ कर रहे हैं, मेरी तारीफ खैर ना करो हैं। कार्तिक कुमार हैं, कहते हैं जी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी नाइस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका कार्तिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी।

यहाँ पे हम दिलजीत की आवाज में बहुत ही प्यारा सा ट्रैक भी आप लोगों को सुनाएंगे, ताकि आप लोग जो है बिल्कुल बोर ना हो जाए हमारी बातें सुन सुन के। तो इसलिए आप लोगों के चेहरे पे स्माइल रखने के लिए आपको ट्रैक सुनाना भी बड़ा जरूरी है। तो दिलजीत की आवाज में बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, ट्रैक का नाम है जी गोट। हाय हाय जट दा प्यार बोरी है।

दिलजीत दोशन की आवाज़ की ना आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हम अफगान जलेबी भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि आप लोग ये गिला ना करें कि यार तुमने तो हमें दिलजीत दोशन पे लगाए रखा, अफगान जलेबी तो हमने सुना ही नहीं है। हाय हाय,

शो में शामिल करेंगे अल्लाह तला की ट्रैक। ये ट्रैक यकीनन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मेरी तरफ से ये ट्रैक तमाम सुनने वालों के नाम जी, जिनको अभी तक लत नहीं लगी हुई उनको यकीनन अभी तक जो है वो इस ट्रैक को अगर वो सुनेगा तो फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी लत हर लगी है।

ओके जी, वेलकम बैक। खुश आमदीद एक दफा फिर से तमाम सुनने वालों को कहेंगे जी, आप सुन रहे हैं रेडियो 95.1 FM। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप सुन रहे हैं, लत लग गई, लत लग गई। ये ट्रैक जनाब जिन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इसका म्यूजिक काफी फास्ट है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये उस टाइम मैं सुनता था जब मैं काफी छोटा होता था। यार छोटा तो मैं अभी भी हूँ। उसने रखी ही नहीं मुझसे बनाकर, वरना उससे वो मोहब्बत करता के जमाना देखता। मैं शिरानी है हमारे साथ, बहुत ही प्यारी पोएट्री भेजी, थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी।

टाइम की बात करें तो जनाब वक्त हो चुका है 1:22 और बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। तकरीबन बहुत ही थोड़ा सा टाइम रह गया जो आप लोगों के साथ मेरा साथ बाकी है जी। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 0115710971। जी हाँ जनाब, एक तो फिर से बता देते हैं 0115710971 इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे जी। उसके अलावा जी दुनिया के किसी भी कोने अगर आप हमें सुनना चाहते हैं तो रेडियो फ़िज़ा 97.1 FM के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, उसको आप डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में और फिर दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ पे ना बंदा हो ना बशर हो वहाँ से भी आप प्ले करेंगे तो आपको हमारी नशियात मिलेंगी लाइव राय रास्त एकदम, और उनमें कोई भी मसला नहीं आएगा। मौसम की बात करें तो थोड़ा फिर आपको बता देता हूँ कि भाई साहब मौसम के बारे में आपको कोई अपडेट नहीं दे सकता, क्योंकि ये ना हो कि भाई मैं बोलूँ कि भाई जी गर्मी है और आप बोले नहीं जी भाई तो बादल बने हुए हैं, क्योंकि मैं स्टूडियो में और यहाँ पे बिल्कुल किसी तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही बाहर की, ना बंदा नज़र आ रहा है ना बशर नज़र आ रहा है और ना ही बादल नज़र आ रहे हैं और ना ही धूप नज़र आ रही है। मुझे जहाँ तक अपनी बात करूँ तो मुझे पर्सनली जो है ज़ाती तौर पर मुझे बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो है वो बादल होते हैं, ठंडी हवा चल रही होती है और एक बहुत ही मज़े का सीन होता है, तो इसलिए बारिश के मौसम को मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। वेल आपको कौन सा मौसम पसंद है आप हमें ज़रूर बता दें जी जनाब। मोमिना हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तमाम दोस्तों का जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ निभा रहे हैं, अपने होने का एहसास हमें दिला रहे हैं।

ओके जी, वेलकम बैक, खुश आमदीद। फिर से कहने वालेंगे कहेंगे जी तमाम सुनने वालों को, हैं फिजा FM 97.1 FM, और आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 0115710971, यही वो जादुई नंबर है जिस पर आप हमें कोई भी कॉल भेज करेंगे, मैसेज भेजेंगे तो ट्रक करके हमारे शो में आ जाएगा और जनाब हम अपने उसे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, अपने उस शो की जीनर बनाएंगे और आपकी प्यारी प्यारी समाधान तक ज़रूर पहुँचाएंगे जनाब इस प्रोग्राम इस ट्रैक को, जो भी आप ट्रैक सुनना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएंगे जी। जितने भी दोस्त अजीज हमें सुन रहे हैं जी अपना गाड़ी में सफर करते हुए, तो जनाब अपनी गाड़ी को जरा आराम से चलाइएगा, प्यार से चलाइएगा, एहतियात से चलाइएगा, और जो लोग हमें जॉब से अभी घर जाते हुए सुन रहे हैं तो उन लोगों को कहना चाहेंगे जी अपने घर वालों के जाते हुए लेके जरूर कुछ जाएं, क्योंकि हाल ही हाल जाना भी अच्छा नहीं होता, तो अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं लाजमी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ लेके जाते हैं तो इससे मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ती है। वैसे तो अगर माल आता हो तो डॉलर से भी जो है और पाउंड से भी मोहब्बत काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन इसके अलावा आप घर में अगर कुछ लेके जाएंगे तो एक जेन्युइन जो है मोहब्बत बढ़ेगी,

बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, आप लोगों ने सुना कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं बीच में इसलिए ज़्यादा नहीं बोला, मैंने कहा आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाएं कहीं और आप ये ना कहें कि उसामा फ़नी तुमने तो हमारी नशियात को जो है वो मुतासर कर दिया है, हम इतना प्यारा सॉन्ग को इन्जॉय कर रहे थे और आप जो है वो सारा मज़ा जो है जाता रहा, तो इसलिए मैंने कहा यार खामोशी ही इख्तियार कर लेते हैं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो और माहौल जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।

रुतबा ट्रैक आप सुन रहे थे। बहुत ही प्यारी आवाज़ थी जी सरदार जी की, और इनका नाम था जी सुरेंद्र सरताज। इनका नाम हम कैसे भूल सकते हैं यार, इनका ही तो नाम है जो हमें ज़्यादातर याद रहता है जब भी हम सिंगरों को देखें, क्योंकि वाहिद पंजाबी के ऐसे सिंगर हैं जिनके सॉन्ग्स में ऐसी जनाब वो एक महसूस होती है लताफत, एक अपनापन महसूस होता है, और इनके अशआर बड़े ही खूबसूरत होते हैं, दिल करता है कि बंदा सुनता ही रहे। सिंह सिंह हमारे साथ कहते हैं जी स्टिल दिस सॉन्ग वाज वेरी पर्सनल फीलिंग्स, मोहब्बत जता लें किधरे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी।

अब साकिब हैं कहते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द पंजाबी म्यूजिक शो, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया जी। राखी यादव है हमारे साथ, कहती हैं दिस दी चंद सितारे सॉन्ग हैज अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया जी। दनियाल मीर हैं कहते हैं मी विरक वॉइस इज मैजिकल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्फा है हमारे साथ, कहते हैं ब्यूटीफुल पंजाब इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, लव फ्रॉम नोटिंगम, थैंक यू सो मच।

हारिस अली खान कहते हैं जी, सॉन्ग को आए हुए 3 साल गुजर भी गए, हाय क्या बात है, वाकई ऐसा ही है जी। इश्क हो गया अखियां नाल, ये ट्रैक जनाब तमाम लोगों के लिए, बहुत शुक्रिया जी आपका, स्पेशली सना रानी हमारे साथ हैं, आपका दिल से शुक्रिया आप लोगों के लिए। ये ट्रैक है जी सना रानी के लिए, थैंक यू सो मच आपका। उसके बाद जी नाजमा हैं, कहती हैं आई एम ए सेम गर्ल बट दिस सॉन्ग, दिस पंजाबी सॉन्ग इज माय फेवरेट सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग वेरी मच, थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम भी सॉन्ग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं वो हमारे साथ हैं, वो इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने प्ले किया, मैंने कहा उनका भी फेवरेट है, तो ज़रूर जनाब अपने शो का हिस्सा बनाएंगे इस ट्रैक को, और ये ट्रैक को क्यों ना हिस्सा बनाएं। जब पंजाब के लोग, चढ़दा पंजाब और लहंदा पंजाब दोनों लोग हमारे साथ हैं, तो इस सॉन्ग को डेफिनेटली हम अपने शो का हिस्सा बनाएंगे ही बनाएंगे। ओके जी, राजू हैं, कहते हैं एमी वर्क इज वॉइस इज मैजिकल, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग सॉन्ग, दे आर हैप्पीनेस एंड फीलिंग, थैंक यू सो मच। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल राइट कहा है जी आपने। उसके बाद यादव किशन कहते हैं आई लव दिस सॉन्ग 10 times बट आई लिसन दिस सॉन्ग 10 times बट आई स्टिल आई एम लिसनिंग सच अ मैजिकल वॉइस, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी ऐसा ही है, हम भी जितनी दफ़ा भी सुन लें दिल करता है कि बार बार सुनते ही रहें। और मैं अपना अगर बताऊं तो मैं एक शादी के इवेंट पे गया हुआ था, वहां पे मैंने ये सॉन्ग सुना था, तो पहली दफ़ा मैंने जब सुना था और पहली दफ़ा ही ये सॉन्ग मुझे पसंद आ गया था, वरना ऐसा होता बड़ा कम है कि पहली दफ़ा ही सॉन्ग मुझे पसंद आ जाए। क्योंकि वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाजत लेने का, अभी ठीक तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं उसमें, तो मैंने सोचा जाते जाते आपको जो है एक दफ़ा उस दौर की याद दिला दें, क्योंकि जो लोग हमें गाड़ियों में सुन रहे हैं उनके लिए इस टाइम बहुत ही सुनहरी मौका है कि वो अपने जो है वो पंजाब को एक दफ़ा याद कर लें, उन फीलिंग्स को ताज़ा कर लें एक दफ़ा फिर से। सॉन्ग को आप मुकम्मल इंजॉय करें, सॉन्ग के बाद आपसे मिलेंगे, रहिएगा साथ साथ, ये है रेडियो FM 97.1।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

कमी वर्क की आवाज में बहुत ही प्यारा सा ट्रैक इन डालूं को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा चलें एक दफा फिर से पंजाब की याद जो है वो ताजा कर देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए प्यारा सा ट्रैक भी प्ले कर देते हैं। जो जो दोस्त हमारे साथ हैं उनके नाम एक दफ़ा शामिल कर देते हैं, उनके पैगामात भी शामिल कर देते हैं जी, ताकि जो है वो आप लोगों को पता चल सके कि कौन कौन हमारे साथ है। कासिम खान कहते हैं वी आर जी आई एम फ्राम नोटिंगम, वेन एवर आई एम सैड आई ऑलवेज लिसन दिस सॉन्ग टेक मी टू माई होम टाउन। तो अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अखिलेश हैं हमारे साथ, कहते हैं जी लव फ्रॉम नोटिंगम सच अ विब्रेंट म्यूजिक, एहो जे वखरे गाने सुनन लई मैं पंजाबी सीख रहे हैं। अच्छा जी, क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद अहमद रजा हैं, कहते हैं जी ओ ए पंजाबी हो जिथे जाते हो आखिरकार आंदे हो, क्या बात है जी, लहंदे पंजाब वालों सलाम वालेकुम। सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच।

टेबल है हमारे साथ, कहते हैं जी दिस टाइप ऑफ सॉन्ग्स ट्रूली गिव्स मी पंजाबी एंड देसी कल्चर वाइब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मॉडर्न पंजाबी सॉन्ग्स मिसिंग दीज वाइब्स, एब्सोल्युटली जी, क्योंकि जो मॉडर्न सॉन्ग्स हैं वो उनमें ये वाली वाइब नहीं आती जो इन पंजाबी सॉन्ग्स में आती है। इसीलिए तो मैं आपके लिए जना प्यारे प्यारे से ट्रैक प्ले करता हूँ ताकि आप लोग इन्जॉय कर सकें। अब भी आप लोग हमारे प्यार को ना समझें तो फिर कैसे ही समझेंगे।

ओके जी, आखिरी ट्रैक के साथ हम आप लोगों को छोड़ के जाएंगे क्योंकि वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो मैंने सोचा एक आखिरी ट्रैक जो है आप लोगों के लिए ऐसा प्ले किया जाए जो कि जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। परिंदे ट्रैक जो है वो आप लोगों ने यकीनन सुन रखा होगा, लेकिन एक दफ़ा फिर भी हम आपको सुनाएंगे लाजमी, ताकि जो है वो आप लोग याद करें कि उसामा फ़ानी ने क्या ट्रैक प्ले कर दिया यार, आदि कर दिया इसने आज इस बार तो फैन।

वेल जी, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला, वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाजत लेने का। 1:51 तकरीबन 51 मिनट हो चुके हैं हमारे स्टूडियो घड़ी के मुताबिक। 51 और पंजाबी में इसलिए आपको बताया था कि आप लोगों को पता चल सके कि यार हम लोग भी पंजाबी हैं, हमारा ताल्लुक भी उसी धरती से है जिस धरती से आप लोगों का ताल्लुक है। बाकी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो उस पर अमल जरूर कीजिएगा, हमें अपना समझ के उसको मान लीजिएगा। और अगर कोई बात दुरान शो आपको बुरी लगी हो, आपको पसंद ना आई हो, आपको अच्छी ना लगी हो तो अपना समझ के माफ कर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि थर्सडे को आपसे फिर मुलाकात होगी 12 बजे से 2 बजे तक। छोड़ के जाएंगे आपको इस प्यारे से ट्रैक के साथ, यकीनन आपको ये ट्रैक बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एक दफा शुरू से आप ट्रैक को सुने, मैं आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह होती है मुलाकात थर्सडे को ठीक 12 बजे से लेकर 2 बजे तक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing.
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: This is a public service announcement.
10: You are listening 97.1 FM.

समीन इकराम, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM और मैं हूं आपके मेजबान। जिंदगी की मसरूफियात में इंसान अक्सर खुद को भूल जाता है। रोजगार की फिक्र, तालीम की जिम्मेदारियां, घरेलू मामलात और बेशुमार मसाइल हमें घेर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, हर मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। हालात बदलते रहते हैं मौसम की तरह, और मौसम बदलते रहते हैं और जिंदगी भी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM। हम प्ले करने लगे हैं नुसरत फतेह अली खान साहब को हमारे कॉलर की रिक्वेस्ट पे। सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशन भी कर दे रहे।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: यू आर प्लेइंग फजान 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2
8: You are listening 97.1 FM।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
4: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
7: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
8: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
9: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
8: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
9: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
8: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
9: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
10: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
8: Park Foods, जो नाम है मायार का.
11: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
12: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
13: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
12: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
13: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
12: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
13: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
12: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS.
13: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
12: टेस्ट भी वाइब भी.
14: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में जियो, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing.
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: जबरदस्त हिट।
10: You are listening 97.1 FM।

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शामिल

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ.
5: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है,
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
5: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया.
4: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
5: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
4: AMH सॉलिसिटर्स. होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे. सोने ते स्वागा ये कि हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने.
5: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा.
4: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम.
5: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
4: लो जी, ओ भी जुबानी याद है. 0115-671-3677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने. मुफ्ता मशवरा लो जी.
6: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: This is a public service announcement.
4: Everybody. The station. That plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: बदल।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
9: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Haza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड एप।
13: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

0: are listening to 97.1 FM Radio Fazza. Radio Fazza.
1: Emergency लगी थी, सारा देश एक जेल खाने में बदल दिया गया था, स्वतंत्रताओं का अपहरण हुआ था, बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए थे, जेलों में बंद किए गए थे। जब एक साल बीत गया तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing. Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: क्या आप जानते हैं मैं कौन?
15: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

0: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है?
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: मैंने
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slusser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.